वरे आइला खुशी क अम सोरन दलानक कुटमाक सांडून पल्या सलनाक वरे आइला खुशी क

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो ಎಲ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಾರಂಗ್ ಕೇಳಿ

वरे आईला खुशी अम सोरन दलानक कुटमाग सांडून पल्या सलनाक वरे आईला खुशी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।